तेरे दर्शन को हम बारे। आप जी दी पवित्र बाणी विचों ए शब्द किवें अकाल पुरख तो सड़के जा रहे हो, किवें बलिहार जा रहे हो।

0: 的冰花姐姐妈给她去把她爱拍的身体没不巧带了给没理了没给她妈带了完爹
1: 啊孙हर नाक्षना दा एक बड़ा शक्तिशाली राजा सी उन्हें भगवान दी भक्ति करके एक वरदान लिया कि ना वो दिने मरेगा ना राती मरेगा ना अंदर मरेगा ना बाहर मरेगा ना मनुख कोलो ना किसी जानवर कोलो भगवान दा वरदान लेके वो आते भगवान बन बैठा उस राजे दा एक पुत्र सी प्रहलाद प्रहलाद ने अपने पिता नु भगवान मनन तो इनकार कर दिता
0: फिर
1: क्रोध विचार के पिता

परमेश्वर दा नाम जपया करो, हर वेले नाम ही सिमरिया करो और परमात्मा दा नाम अमृत पींदे रहा करो। साई फरमाउंदे हन कि इस नाम दी किस नूं प्राप्ति हुंदी है,

0: द्वीप से वह करके अरसात समुद्र की मत कहो। काट वनस्पति सगरी दिख बहु के लेखन काज बने हो। सारसता पकता करके जब कोट गणेश के हाथ रखे हो। काल कृपा ना विनती बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न
1: कूट बराद हमारे
0: कूट बराद।

ना खाली ना रहे। आओ सारे मानक दे दर ते हाजी अलग बाबा जी वचन कर दे सन जेड़ा गुरु नानक दे दर खाली चला जाएगा वो सारा खाली रहेगा। आओ चोरी करो ते सारे हाजी अलग कीर्तन हो रहे हैं।

दुष्ट दमन तू संसार तेजा। कहंदे ने मेरा मन नहीं करदा तेरे चरणा तो, पर हुक्म भी मनना है। पर बार बार कह रहे ने मेरा दिल नहीं करदा किसी होर दी ड्यूटी लाओ। प्यार नाल सत्कार नाल किसी जोर जबरदस्ती नाल नहीं, थापड़े दे दे के जिवें प्यो पुत्र नूं समझांदे बच्चे नूं आखदे कि मेरे पातशाह जी दे की वाक हन, आप फरमांदे न आओ चलिए श्री हेमकुंड साहब जिथे मेरे कलगीधर पातशाह जी परमात्मा निरंकार नूं जवाब दे रहे ते की आखदे न।

मैं बंदा बेखरीद सच्चा है मेरा, मैं बंदा बेखरीद सच्चा है मेरा, जो पिंड सब तिसका सब कुछ है तेरा, माने माने तू तने।

कर बाहिर तेरा प्रवासा, तू जन के है संग, कर कृपा प्रीतम प्रभु अपने, नाम जपो हर रंग, जन को प्रभु अपने का तान, जन को प्रभु अपने का तान, जो तू करे करावे स्वामी, हा मसलत परवा, चरण शरण हम अनाथ ना फकन, अपनी कृपा करे चल कमल नानक आरा दे, किस दिन आम के पत परमेश्वर गत मरायण, तन गोपाल गुण साखी,

सके गुरु सूरे हल्त पल्त प्रभ आप सवाए कार्य होए सगले पूरे हर नाम जपत सुख सहजे हर नाम जपत सुख सहजे मजन होत साधु तूरे आवन जान रहे चित पाई जन्म मरण के मिटे वसूरे गुरु नारायण दा गुरु गुर सच्चा सिद्धनहार गुर तुठे सब कुछ पाया जन्मानक सब बनिहार हर गुण गाओ।

0: कर शब्द विचार गुरु कर रे मन मेरे गुरु कर शब्द सुपन अघन कटे सब तेरे गुर नैन पैन गुर गुर करो
1: गुर नैन
0: पैन गुर गुर करो गुरु सत्य कव नल कहे गुरु सत्य कव नल कहे जिन गुरु न

आगे को किछ तुल्हा बांधो। कोई भरोसा नहीं इस शरीर दा। नाम दा तुल्हा तैयार कर जिदे तो तू चढ़ के पवजल पार कर जावे। सब कहंदे ने समा किसे दी इंतजार नहीं करदा।

सतगुरु कहिंदे ने देह सदा नहीं रहनी। जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जा के लोग तैनू याद करन, भाई वाह फलाना तां इदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

सतगुरु कहिंदे ने ज्ञान दा झाड़ू मन दे हाथ विच पकड़ लै ते अपने अंदरों ईरखा द्वैत चुगली निंदा बखीली ए सारी हूंज के बाहर कढ़ दे ताके तेरे हिरदे च टिक जावे सतनाम श्री वाहेगुरु।

दबा दिता बड़े निराश होके घर नू आए कोई गए सां खुशियां मानन ते दुखां दियां झोलियां भर के आ गए गुरु का सिख अपनी घर वाली नू समझांदा है पदी पुरशे मालिक जो करदा भला ही करदा पता नहीं इस विच ही साडा कोई भला हो सानू निशर्द नहीं होना चाहिदा छिदक नहीं हारना चाहिदा ये सारियां दातां ओदियां हन वाहिगुरु ने बख्शिश कीती अगले साल फिर सोना लाल बख्शिया हुण घर वाली दा जी नहीं करदा के लै जावां किते फिर ना शरीर त्याग जावे पता नहीं की कारण है पर गुरु के सिख ने आख्या जिस बच्चे ने गुरु का दीदार नहीं कीता गुरु ने जिस बच्चे नू अपना नहीं बनाया वो साडा भी नहीं इसलिए पहले गुरु दे चरणा ते नमस्कार करानी है भागवाने तू मन नू डोलाए मानना कर असी गुरु के बच्चे हां ओ साडे माता पिता हन ते माता पिता कदे भी अपने बच्चियां नाल वितकरा नहीं करया करदे प्यारी सात संगत जदों मथा टिकाण लई आए सतगुरां दे चरणां ते लिटाया ए बच्चा भी शरीर त्याग गया उच्चारण करो श्री हुण तां बड़ा ही बैराग आया पर धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह कहन लगे इस नूं दबा दिओ जप जी साहब दा पाठ करके ते दबा दिओ जो मालिक करदा है चंगी करदा है बड़े निराश होए पर एक पासे गुरु का सिदक भी है वही गुरु जो करदा है भली करदा है प्यारी सात संगत तीसरे साल भी निरंकार ने एक लाल इन्हां नूं बख्शिश कीता हुण घरवाली कहिंदी मैं नहीं लै जाना इसनूं गुरु का सिख कहन लगा भागवाने एक गुरु दियां गुरु ही जानदा है इस वास्ते असी गुरु के जीउंदे मोए जिथे किथे असी गुरु के हां साडा तन मन धन परिवार सब गुरु का है असी क्यों बेमुख होके मरी क्यों बेमुख होके विचरीए ते जदों आए सतगुरां दे चरणां ते नमस्कार कीती सतगुरां ने अपना मेहर दा हाथ इस बच्चे ते रखिया सदा चिरंजीव रहो सुख मानो गुरु घर दी खुशियां मानो ते गुरु का सिख कहिंदा महाराज पहलियां नूं भी ए असीस दे देनी सी तां धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह कहन लगे परमेश्वर दा हुक्म एवें सी उन्हां दा जन्म मरण कटिया गया ते तुहाडे भी दुख कटे गए हन पहले बच्चे ने 16 साल दी उम्र विच तुहानूं विछोड़ा देना सी ते कितना दुख होंदा दूसरे बच्चे ने 25-26 साल दी उम्र विच व्याह करा के तुहानूं विछोड़ा दे जाना सी ते माता पिता दे बैठियां बच्चा चला जावे कलजे नूं शेक पै जांदे हन तुसी गुरु घर विच सिदक दे नाल आए हो प्यार दे नाल आए हो गुरु ने उन्हां दा भी जन्म मरण 84 कट दित्ती है ते जेड़े तुसी दुख भोगने सी ओह भी दुख कटे गए हन तो इस वास्ते गुरु जो करदा है भाई भला ही करदा है इसलिए हजूर बाणी विच बख्शिश कर रहे हन।

इस बुढ़ी मां दा सहारा छोटा जिहा पुत्र मालक दा पाणा वरत्या। दुखां ने इस माता नूं घेरा आण पाया, पाणा इंज वरत्या के माता दा पुत्र गुजर गया। ए मां ताहां मार मार के रो रही है, इसदा दुख देखिया

खुश होना चाहिदा है, तैनू तेरा पति परमेश्वर मिलिया है। रोना मैनू चाहिदा है जिनू अजे पति परमेश्वर मिले, मालक ओ प्रभु नहीं मिलिया। मालक रहमत करे, मैनू भी मेरा पति

कहीं बनिया बैठकर तिजोरी भर रहा है, वो अपने आनंद में बैठा है, मौज कर रहा है। कहीं अफीम की अफीम खा के अपने आनंद में बैठा है। बाबा जी कहते हैं सबको अपना अपना रंग प्यारा लगता है। हजूर कहते हैं

भूखे शेर को मांस मिल जाए। झपट पड़ता इसी तरह गुरु प्यारों को सत्संगत का आनंद मिले तो भागे हुए आते। भूख है ना अंदर, शेर को मांस की भूख है, बहादुर को लड़ने की भूख है। बाबा जी कहते हैं कंजूस को पैसे की भूख है, वो जमा करता ही जाता है, चाहे बेटा ना हो औलाद ना ही हो, फिर भी उसे कंजूसी की आदत पड़ी। बाबा जी कहते हैं ऐसा ही भगवान के भक्तों को इस संगत का प्यार रंग, जहाँ जहाँ पर प्रभु ने लगा दिया वो वहीं लगे।

कतहु सुचे तुह के चेतना को चार किया, कतहु अचिंत हो के सोवत अचेत हो। साहेब गुरु गोविंद सिंह साहेब जी बहुत प्यारी रचना अकाल उस्तत विच फरमान दी, कतहु सुचेत हो के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत हो के सोवत अचेत हो। कतहु

आओ भाई, आज दे दिन अरदास करिए। पातशाह, साडे हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलदी है उस नूं मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने भाई कन्हैये उते, जिस वेले उसने दुश्मन नूं दुश्मन ना समझिया, फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें, गल बनेगी। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा, पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं होई, ओदे उते प्यार दा पाना पानी पाना पएगा। साच कहो सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने, तुसी किसे दे घर चले जाओ, तुसी उन्हां नूं कहो मैनूं प्यार दियो, कोई नहीं देगा। पर जे तुसी खड़ के कह दियो आओ लोको मैं तुहानूं प्यार दियां, हजारां लोग तुहाडे कोल आ। ये पहल तू करनी है। प्यार असां देना है, लेना नहीं। देवे तां ठीक है, पर असीं कहंदे आ इन्हें फतेह नहीं बुलाई, असीं क्यों बुलाईए। ना भाई, वो नहीं बुलांदा, तू बुला ले, तू प्यार कर, तेरा फर्ज है। हंकार ते नफरत दी आंधी विच ऐ मेरे पातशाह, जिवें तुसीं मलम ते पट्टी दे दित्ती सी, मानो गाउंदा गाउंदा यही कुछ कह रहा सी। भावे कोई मोमन वेख रहा है, भावे कोई पहाड़ी राजा है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, पानी मुंह विच देंदा होया एक कोई पुकार है, केड़ी

कऊ जच गंधर्व उरग कऊ विद्याधर कहू भय किन्नर पिसाच कहू प्रेत हो कहूं हो के हिंदू आ गायत्री को गुपत जप्यो कहूं हो के तुरका पुकारे बांग देत हो कहूं को कुकाब हो के पुराण को पढ़त मत कतहूं।

भगत जा को आराधे लाख तपीस तपगी साधे लाख जोगिस करते जोगा लाख पोगीसर भोगे भोग तेरा अंत न पारा बाहर तेरा अंत न पारा बाहर।

साधना कते एक बात अरब के आर भी अराधे तेरू नाम है। फारसी फरंगी माने कलदारी कूड़ा सीधाने पश्चिम के पश्चिमी पहचाने निज काम गए मरहट्टा मंगेल तेरी मन सुन तपस्या कर मरहट्टा मंगेल तेरी मन सुन तपस्या कर।

दिल्ली के दिलवाले तेरी आज्ञा में चलते तेरा अंत न पारा वारिया। रो के रुगेले मग देश के मंगेले भी बंगसी बंगेले पाप पुंज को मालते हैं। गोखा गुन गावे, गोखा गुन गावे।

हर के गुण अगम आगा हम क्यों कर जपो आणिया हरे तुम बड अगम आगा तेरा तेर तेर।

वचन बाणी नु किया ये सतगुरु तुहाडे मुख चो निकले हुए वचन बाणी दे रूप दे इना दी की महिमा है के पुनियां दा देदार हुंदा पर पापियां दा निर्गुण आ रहे दा भी निस्तारा तुहाडे बचन तुहाडी बाणी करदी है।

0: में आन बहुत मिल बैठत, जदों सुखां दे साधन होंदे हन, चार पैसे पले होन मनुख दे, ता बहुत लोग रिश्तेदार सज्जन मित्र आके घेरदे हन। रहस चोहूं दिस घेरै, हर एक मनुख चाहुंदा है भी मैं इस दी प्रसन्नता लवां, ते जदों धन दौलत पदार्थ मुक जांदे हन, ता फिर विपत परी सब ही संग छाड़त, कोई दुख आ लगे मुसीबत पै जाए, धन दौलत चले जान ते फिर रिश्तेदार भी मुख मोड़ जांदे हन, सज्जन मित्र भी मुख मोड़ जांदे हन, बल्कि परों कोई आ रहा होवे वेख लवे ते पासा वट के पासे चला जांदा है, किदे कुछ मंग ही ना दवे। उच्चारण करो श्री
1: वाहिगुरु।
0: इसे लई हजूर बाणी विच बख्शिश कर रहे हन, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूं दिस घेरै, विपत परी सब ही संग छाड़त, को ना आवत नेरै, घर की नार बहुत हित जांसो। बड़ा हित होंदा है मनुख चंगे तो चंगी वस्तु घर वाली वास्ते लियाउंदा है, चंगे तो चंगा वस्त्र, कितने भी कूड़ कुशत गुनाह करने पैन, घर वाली नूं खुश करन लई ए सब कुछ करदा है, पर जदों विपता पै जावे तां घर वाली भी मुख मोड़ जांदी है। हजूर दी बाणी कह रही है कि घर की नार बहुत हित जांसो, सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजी ए काया, प्रेत प्रेत कर भागी। ए झूठा व्यवहार झूठियां प्रीतां संसार दिया, हजूर कहंदे ने ए इथों तक भी नहीं निबदियां, दरगाह विच किथे कोई जाएगा भाई।

जां को मुश्किल अत बने, ढोई कोई ना दे, लागो होए दुश्मना साक भी भज जांदे हन जदों मुश्किल बन जांदी है। धन गुरु अर्जन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हैं।